इतनी देख रहे आपके दोबारा। तो खैर कमर्शियल ला लिए क्योंकि किसी कारण लाइन कट हो गई है। दोबारा फिर आप मेरे को प्यासी सुदीप ढिलों का सीधा नंबर नवी ने मनाया जोड़ा

सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहूं झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर यह खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत के नाल।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
3: पंजाबी लहरां प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
4: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
3: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
4: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
3: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं,
4: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं,
3: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं।
4: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
3: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
5: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।

प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपके स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5 पर कॉल कीजिए 9054567333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

ब्रांडेड प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 का डेटी पर कॉल कीजिए 905-456-2733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

का व्यापार कृपा दानी आज पहर अनाथों में पूरण काल हमारे हर जियो तो सुख संपत राज राम ले हो पाई मेरे को रब या गै अरदास राम जो पाओ सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा।

कमाना सुख सहज आनंद मुर्गाव मन मन देह सुखानी रहा पतित उदाहरण सतगुरु मेरा मह जिसका परभाषा मछले सब सच्चे साहेब सुन नानक की अरदासा सूरत महला पंजवा बख्शा पार हम परमेश्वर सगले रोग किनारे गुरु पूरे की सरणी उभरे कागज सगल सवारे मन जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सतगुरु पूरे अपनी कृपा धार रहा सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया बड़ी बड़ियाई नानक करते की साथ सबद सत पाखिया सूरत महला पंजवा भय कृपा स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप रवाया भाई ठान पई संसार अपने जी जत आपे राखे जमे की ओ हटदार हर के चरण हृदय उरतार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसके सरणी उबरे भाई जिन रचिया सब कोए करण कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु ते आई है भाई मन तन शीतल होए संत हो हरे हरे नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाना फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप रवाया अपनी कृपा धारी पाप हम प्रभ भय दयाला दुख मिटया सब परवारी सर्व निधान।

प्रेम तट पुनि पई गुण गाए भक्त गया हर नाम से आए रहा सबरी थाई रव्या आद जुगाद जाता मन पड़ता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाए मूठे सब पाए सतगुर टूटे पार हम

सवारिया भट्टी यार जा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचारिया रहा वन त्रिण त्रिभुवन हरिया होए सगले जिया साधारिया मन नानक फल पाए पूरन इच पुजारिया बिलावल महला पंजवा रोग जया प्रभया प्रवाया नीपई सुख सहज कर आया रहा रज रज भोजन खावा मेरे भाई अमृत नाम जिन माहे त्याई नानक गुरु श्री सरनाई संकट नाशन ने नाम की रणेज रखाई नारद उवाच।

सभी श्रोताओं का धर्म संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया सा मौसम है आप सभी के लिए, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे इलाके भी हो गए हैं जहाँ पे इतना कहर पड़ा है गर्मी का कि आग लगी है और बहुत लोगों में त्रासदी तकलीफ हो गई है। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये त्रासदी दूर करें, इस संसार में शांति रहे और सबकी सुरक्षा रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना को लेकर के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, लेटेस्ट बारबेक्यू, किचन की गैजेट्स और आउटडोर फर्नीचर, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है, बहुत बढ़िया रेट में, बहुत बढ़िया क्वालिटी, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-799-0045-799-0045। अब आपके लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में, और इस वीकेंड में आपके लिए ये बहुत बड़ी एकादशी होती है, दो दिन की एकादशी, एक वो जो व्रत रखने वाली है पहले एकादशी, तो इसमें बहुत सारे लोग चावल नहीं खाते हैं तो बहुत सारी और पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप मूविंग के लिए ट्रक बुक करना है तो आज ही बुक कीजिएगा 416-524-4164-426-7004। तो आपका सामान बड़ी हफाजत से पहुंचाते हैं कि बहुत सारी टीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक कीजिए और बिल्कुल अपना बेफिक्र हो जाइए मूविंग के बारे में, क्योंकि मूव होना सबसे बड़ी मुश्किल की बात है, मूव होना कोई आसान बात नहीं है। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, किचन वाटर गोल्फ में, तो मुंशी जेंट को कॉल कीजिए 519-546-1260-519-546-1260 पे आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है, वो आपको सुनाते हैं। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है, बहुत बढ़िया आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट बैरिटू बटानिया पे मौजूद है, तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1730-905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको ये एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाते हैं, ये मोहम्मद रफी लता जी का गाया हुआ गीत है। तो फिल्म थी आपके लिए जन्म जन्म के फेरे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और गाना कमाल का है।

जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए एक और बहुत गाना बढ़िया मैंने चुना है। तो ये जो रात को तो मौसम थोड़ी ठंड हो जाती है, बहुत ही हवा ठंडी ठंडी चलती है, तो रोमांटिक सा वातावरण हो जाता है आप सभी के लिए। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और आपको बहुत बढ़िया मौसम है, तो कोशिश कर रहे हैं कि मनोरंजन भी आपका बढ़िया सा हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो जरूर हमें आप मैसेज कर सकते हो 6477737640। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 में मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-625-0055 905-625-0055। अब अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो अब आपके लिए लंदन में मौजूद है। तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप और जानकारियां ले सकते हो। मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए गोर रोड में लंदन में मौजूद है। तो किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा लंदन के आसपास के इलाके में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर 416-524-704। आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए 9057990045। पहले की और देरी की जाए आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम आपके लिए। जो भी क्राइम की रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, एक्सट्रोशन की न्यूज आ रही हैं, वो जब तक हमारा प्रोग्राम वीकेंड में आता है आप तक सभी खबरें पहुंच चुकी होती हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत आपके लिए।

0: अरे चांदनी आई कमल कमल दरिया ऊपर चांदनी आई कमल कमल
1: इन पहाड़ों पर मन मेरा नया मतलब
0: एक बात कहता हूँ

स्वागत है घर संसार में। तो इसी तरह आपका मनोरंजन रात को भी हम 10 से 11 बजे आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लेकर के पेश हो जाएंगे। अब आपके लिए अगर आपने क्लीन का काम करवाना है, मास्टर क्लीन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। लंदन के आसपास के इलाके में किसी तरह का भी आपने क्लीन का काम करवाना है तो आप मास्टर क्लीन डिपो पे जाइएगा और जानकारी के लिए मास्टर कलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइए, बहुत पूरी जानकारी लीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय तकरीबन खत्म ही होने वाला है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चाटी कला तेरे पाने श्रद्धा पला, रात को आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। जो लोग प्रोग्राम के पसंद करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर्दी गला तेरे पाने सुबह पला है वंडरफुल डे एंड ए सेफ वन। ब्रैम्पटन में कारा सागा चल रहा है 3 दिन का, आप जरूर जाइए, बहुत सारे कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।

24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट यहाँ पहुँचो 10970 ब्रैमली रोड वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री मैंगो लस्सी सॉल्ट लस्सी मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच अमृतसरी कुलचा विद चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 3

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो हुन उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ
2: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ
0: आप घर चो बाहर क्यों जाना चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट होटल्स मोटल्स नर्सिंग होम्स विच वी काम करदे आ सस्ते दा दावा तां नहीं पर कम दी गारंटी है 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट सिक्के बंद कम दी गारंटी 647-515-8000
3: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 तो शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट ट्यूसडे चना भटूरा वेंसडे लाजवाब वेज थाली थर्सडे यमी हाका थाली फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल कॉल एट 9057948111 सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन
4: एम 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 तो 6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 तो 6 शामी जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 तो लैके शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-547-3381 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग चलो AM 530

0: हाय रब्बा हुण की बनू
1: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी ता याद रखो इको नाम बरा टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
2: इना कोल है पांच तड़ले दा कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम
1: जो दवांदे ने वध तो वध लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फी इना दी टीम हुण तक मिलियंस डॉलर तक दी सेटलमेंट करा चुकी है ते पैसे सेटलमेंट तो बाद ही चार्ज करदे ने आज ही कॉल करो रूपा बराड़ बुरा नु 416-991-4946-991-5939 बराड़

0: ब्लैक फ्राइडे प्राइसेस इन जुलाई, ब्लैक फ्राइडे प्राइसेस इन जुलाई, ब्लैक फ्राइडे लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर होंदियां जड़ियां जुलाई महीने च दित्तियां जा रही थानूं। तो जदों लोएस्ट प्राइस जुलाई महीने दियां प्राइसेस थानूं ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलाइंसेस तो मिलनगियां, वह भी कोई एक कंपनी नहीं है, उहदे च जीई फ्रिजडेयर, फ्रिजडेयर प्रोफेसनल एंड गैलरी सीरीज, बॉश जर्मन ब्रांड है, एलिका इटालियन ब्रांड है, सोनी एंड सैमसंग वर्गे ब्रांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिस ना कर जाना क्योंकि आज तुहानू फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर जिहड़ा 2500-2600 डालर वाला सिर्फ 1799 का मिलना, 7-800 डालर कल्ले फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर से तुसी सेव कर लेना। और अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का वाशर एंड ड्रायर है, अल्ट्रा फ्रैश वेंट सिस्टम के नाल लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। 905-450-2828 नंबर है। तो जो असी गल करते हैं ब्लैक फ्राइडे की प्राइसिस की, यानी साल दियाँ सब तो घट प्राइसिस तुहानू कित्थों मिलनियां, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर वास्ते ग्रैंड फर्नीचर, ग्रैंड फर्नीचर, ग्रैंड फर्नीचर। तो ग्रैंड फर्नीचर है कित्थे है जी, 6685 टॉमकन रोड, 6685 टॉमकन रोड ते तुसी अज पहुँचना है। तो ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई का फायदा चुकना है क्योंकि कोई 1-2-400 का सेविंग नहीं है, 8-800 डालर की सेविंग है जे पूरा बैडरूम सैट लेना है। जे कल्ला तुसी सोफा लेना है तद भी तुहानू 700-800 डालर की सेविंग है। पहुँचना कित्थे है, 6685 टॉमकन रोड। सुखवीर जी साढ़े नाल लाइन ते पहुँच गए ने, आओ सुखवीर जी लंघ आओ ते दसो अज केड़ी केड़ी लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर है जड़ियां दित्तियां जा रही ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर ते।
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद भाजी। बिल्कुल इस वीकेंड उपर किसी भी तरह की फर्नीचर की परिवार बाइंग करनी चाहते हैं तो जरूर एक चक्कर लाओ 6685 टॉमकन रोड के उपर, 6685 टॉमकन टॉमकन टॉमकन रोड के वालों गड्डिया घुमा लो। रिकलाइनर सोफा सेट की डील देने, 5 सैट आए ने जेडे परिवार राइट वे एक्ट कर लेंगे पहुंच जाएंगे उन्होंने वास्ते डील आ। रिकलाइनर सोफा सैट, 3 सीटर सोफा, 2 सीटर लपसेट सोफा एंड लपसेट, 4 रिकलाइनर के नाल फुली लोडेड, जिहदी रेगुलर कीमत मार्केट दे विच 2,2500 डालर सी। 5 जिहड़े सेट परिवारां नूं दित्ते जाणे आ, 799 दा रिकलाइनर सोफा एंड लपसेट, 799 दा तुसीं अपने घर लैके जा सकदे हो। ते नाल दी नाल जिन्हां परिवारां ने क्वीन साइज दा सॉलिड वुड दा बैडरूम सैट लैणा, जी हाँ क्वीन साइज दा सॉलिड वुड दा बैडरूम सैट लैणा चाहुंदे हो, क्वीन साइज दा बैड ड्रेसर मिरर नाल साइड टेबल गोल्डन कलर दे उपर हैंडल लगे होए ने, सो सॉलिड वुड दा क्वीन साइज दा बैड ड्रेसर मिरर नाल साइड टेबल कंप्लीट बैडरूम सैट, जिहदी रेगुलर कीमत 1500-1600 डालर सी, 599 दा पूरा बैडरूम सैट तुसीं अपने घर लैके जा सकते हो। क्वीन साइज दा बैड ड्रेसर मिरर नाल साइड टेबल गोल्डन कलर दे हैंडल लगे होए ने, 599 डालर दे विच। कोई भी तुसीं जानकारी लेना चाहुंदे हो तो राइट वे नंबर ते संपर्क कर सकते हो, 6472620000, 6472620000, जहां परिवार पहुंच सकते ने 6085 टॉमकन रोड के उपर, 6685 टॉमकन रोड, डेरी टॉमकन की मेन इंटरसैक्शन है हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर, 6085 टॉमकन रोड, 6685 टॉमकन रोड पर।
0: बिल्कुल जी, जिदा जे तुसी ब्लैक फ्राइडे दियां प्राइसिस दा फायदा चुकना है, जे तुसी 6-600 डालर 8-800 डालर सेव करना है, जे तुसी वधिया 100 साल फर्नीचर लेना है ते लेटेस्ट स्टाइल एंड डिजाइन च लेना है, जे तुसी डिफरेंट डिफरेंट कलर चॉइस दे नाल अपने सोफे की सिलेक्शन करनी है तो वह भी साल दियां सब तो घट प्राइसिस ब्लैक फ्राइडे प्राइस इन जुलाई च तुसी लैके स्पैशल प्रमोशन का फायदा चुकना है। तो फिर तुसी पहुँच जाओ 6085 टॉमकन रोड, या कॉल करके पिक्चर मंगानी है तो पिक्चर्स भी मंगा सकते हो, 6472620000, 6472620000।

0: पल्प, वन विदाउट पल्प। ये भी तुहानू 50% डिस्काउंट $400 तो $199 का मिल रहा ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस से। फिर साढ़े को जी स्टोन बेक्ड पिज़ा, जे तुसीं पिज़ा दे शौकीन हो, पिज़ा लवर हो, तो स्टोन बेक्ड पिज़ा काउंटरटॉप रख के बनाउणा माइक्रोवेव की तरह, तो इहदी जिहड़ी स्टोन प्लेट है एक बारी तुसीं उहनूं वार्म करना जी, प्री हीट जिहनूं असीं कहिंदे आ,
1: ठीक है।
0: उस तों बाद इहनें हर 3 मिंट च पिज़ा बनाउणा।
1: लो
0: सो तुसीं जस्ट पिज़ा लाउणा, 3 मिंट च पिज़ा तैयार। तुसीं ब्रैड बनाउणी है, 3 मिंट च ब्रैड तैयार। तुसीं नान लगाउणा, 3 मिंट च नान तैयार। और एयर फ्रायर बिल्ट इन है इहदे च। सो स्टोन बेक्ड पिज़ा, स्टोन बेक्ड कुकिंग विद एयर फ्रायर, ये भी तुहानू $500 वाला $249, अद्धी प्राइस से $249 का ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस तो मिलेगा। फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर, अल्ट्रा फ्रैश वेंट सिस्टम के नाल, अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर, आज तुहानू $2,500 वाला $1,799 का मिलेगा। और ये भी गरंटी है कि तुसी 700 to $800 की सेविंग करोगे फ्री होम डिलीवरी के नाल, एनर्जी सेवर, वाटर सेविंग एंड डिटर्जेंट सेविंग। तो क्योंकि माइक्रोबॉन रबर टेक्नोलॉजी है, ये अल्ट्रा फ्रैश वेंट सिस्टम होन करके 10 ईयर्स वारंटी है। यदी रबट नू कदी मोल्ड नहीं लगेगा, उदे चो कदी बैड स्मेल नहीं आएगी। सो अगर एहो जे हाई एंड फीचर्स, अपडेटेड टेक्नोलॉजी दे लोएस्ट प्राइस नू तुसी आज लेना चाहते हो, तो फिर ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते पहुँचना है, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी, ऑन बोवेड है जी। साड़ी वैबसाइट है brampton appliances.com, 905-450-2828, 905-450-2828। तो जो असी ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस लोएसट प्राइस गरंटिड की गल करते हैं, तो फिर फ्रेंड्स फर्नीचर, फ्रेंड्स फर्नीचर, बेहतरीन सेल तुहानू मिलेगी, लोएस्ट प्राइस मिलनगियां। बॉक्सिंग वीक ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई दित्तियां जा रही, सुखवीर लाइन ते आ गए जी, ते तुहानू लोएस्ट प्राइस करनगे। याद कर लेना पिछले लिंक च क्वीन साइज बैड $299 का मिलिया, नाल क्वीन साइज मैट्रस $250-$300 का फ्री गिफ्ट भी दिता जा रहा। सो पहुँचना कितने, 6685 टॉमकन रोड, 6472620000। सुखवीर जी लंघ आओ तो दियो फिर डील अज दी।
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद बाजी। सो किसी भी तरह की परिवार स्वीकरण के उपर फर्नीचर की तुसी बाइंग करनी चाहते हो, अपने मास्टर बेडरूम के लिए बेडरूम सेट लेना चाहते हो, सोफा सेट लेना चाहते हो, पावर रिकलाइनर लेना चाहते हो, या टर्की स्टाइल के सोफा सेट लेना चाहते हो, तो जरूर एक चक्कर लाओ 6685 टॉमकन रोड के उपर, 6685 टॉमकन रोड न परिवार याद रखना, तो नाल दी नाल डील दे रहे हैं जिन्हों परिवार ने मास्टर बेडरूम का बेडरूम सेट लेना। जी हाँ, किंग साइज का बेडरूम सेट, वाइट कलर का लैकर फिनिश के, किंग साइज का बेड, हेडबोर्ड के एलईडी लाइटां, हाइड्रोलिक स्टोरेज, ड्रेसर मिरर के एलईडी लाइट, नाइट स्टैंड के उपर वायरलैस चार्जर। सो किंग साइज का हाइड्रोलिक स्टोरेज वाला बेडरूम सैट, ड्रेसर मिरर के एलईडी लाइट, नाइट स्टैंड के उपर वायरलैस चार्जर, कंप्लीट बेडरूम सैट, जिसकी रेगुलर कीमत $3,500 से, पर जिन्हें परिवार साढ़े को इस वीकेंड के उपर पहुंचे पूरा बेडरूम सैट $1,499 का। जी हाँ, $1,499 के किंग साइज का हाइड्रोलिक ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ 6685 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੌਮਕਨ, ਟੌਮਕਨ, ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸੋ ਬੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੋਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਰੀਅਲ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਟੌਪ, ਸੋ ਰੀਅਲ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $1,200 ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਵੀਕਡ ਲਈ $399 ਦਾ ਰੀਅਲ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਟੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ $399 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ 6685 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਟੌਮਕਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਭਾਜੀ।

0: बात, उनके पास कहीं की भी एजुकेशन है, चाहे वो इंडिया की है, पाकिस्तान की है, वो वैलिड है, 10th 12th, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ की पॉलिसीज गवर्नमेंट की टांग नहीं खींचती, सपोर्ट करती है। तो इसमें अगर फैमिली ऑफ फोर है तो 80,000 की फंडिंग आती है, जिसमें से $40,000 ग्रांट है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री पैसा आपके खाते में आ रहा है, हमारे खाते में नहीं आ रहा।
1: जी खाते च $40,000 ग्रांट का पैसा आ रहा, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚਣਾ, ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ?
0: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਕੋ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰੇ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇ ਜਾਏ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨੇ ਲਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ $10 ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਹਮ ਆਪਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 30,000 to 100,000 ਕਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, तब हमें लगता है कुछ कह चुके। जब गवर्नमेंट आपकी $900 million 30 billion तो दे दिया, 30,000 million 900 million और दे रहे यूक्रेन को, तब तो आपको हैरानी होती नहीं है। जब गवर्नमेंट आपको आपके खाते में फंडिंग दे रही है तब आपको लगता है कुछ झोल होगा। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, 8 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं।
1: सो खाते च 40,000 तो लेके $50,000 आ सकता, तो तुम कितना पैसा लोगे, तुम्हारा कमीशन की है?
0: कोई कमीशन नहीं है, कोई कैच नहीं है, कोई मीठी बातें, कोई ठगी, कोई चोरी, कोई कागज ही नहीं हिल रहे, कोई सेटिंग ही नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट के पास आपके कागज पहले से ही है, NOA, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये कागज लगते हैं, बैंक को तो सबमिट हो नहीं रहे हैं। और जितनी आपकी इनकम कम है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड है, उन्हीं को फायदा है इसमें, जिनकी इनकम 2024 के NOA पे इनकम कम है, कम है, कम है, तो ही कॉल करें बस। ज्यादा है तो कॉल ना करें, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं है इस चीज का। हम उसी को एंटरटेन करते हैं जो बंदे स्किल, जो बंदे सूट करते हैं इसको, ऐसे किसी को नहीं भेज देते। हमारे पास इतने क्लाइंट आते हैं, सर उन्होंने ये कहा था, दूसरे एजेंट ने ये कहा था, पता नहीं लोग क्या क्या मार्केट में एक दूसरे को पागल बनाते हैं। हम तो ओरिजिनलिटी से काम कर रहे हैं, जो बंदा हमारे पास आता है वो रिटेन हो जाता है, एलिजिबल होता है। तो
1: सर दोस्तों तुम जो तुम्हारे मन च कोई क्वेश्चन है कॉल कर लो, सिर्फ कॉल करना भी फ्री है, एक बार कॉल करके इन्हों आपकी सिचुएशन दसो कि असी जी आ इन इनकम आ, असी आ फैमिली साइज आ, इस तो बाद जे इन्होंने कहता हाँ जी तुम 60,000 एलिजिबल हो, 40 लियो, 30 लियो, 30 तुम्हें मिलेगा, 30 लोन का मिल जूगा, 50 तुम्हें मिलेगा, 50 लोन का मिल जूगा, फिर तुम प्रोसीड कर लो। तो इन्हों पैसे 199 या $499 देने, वो कदों जो तुम्हें पैसे खाते दे आ गए? सारी गलबात 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
1: ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ?
0: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ?
1: ਅੱਛਾ,
0: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ। ਲੋਨ ਦੇਖੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ, ਹਮ ਲੋਕ ਲੋਨ ਸੇ ਡਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਹੈ। बट यहाँ पे डिफरेंट है कुछ। यहाँ पे अगर आपका एक साल का कोर्स है तो आपका एक साल तक 0% है ब्याज, और उसके भी 6 महीने के बाद किस्तें स्टार्ट है, 15 साल तक आप पे कर सकते हैं, और 2.5% साल का ब्याज है। मतलब 50,000 का आपने, अगर फैमिली ऑफ 5 है, 50,000 ग्रांट आया, 50,000 लोन आया, जो लोन है 50,000 का आपने 55,000 वापस करना है 10 साल से 15 साल में, बताइए 5,000 ब्याज है 10 से 15 साल का, इतना कम ब्याज
1: है, 2% ही है,
0: परसेंट साल का ओपन लोन है, राइटर पे कर दो 3 साल बाद अगर आपने पे करना है तो।
1: वाह जी वाह, 437-264-3175 कम की करना तुसी, कोर्स करना, कोर्स केड़े ने बाई जी? ओह तो ऑनलाइन ने, जिवें आपां फोन ते रीलां देखदे आ, बस ओ रीलां ला कम ही देखदे देखदे तुसी कोर्स तुहाडा अटेंडेंस लग जाऊ है जी, मतलब फोन देखदे देखदे फोन दे उत्ते क्लास लग जाऊगी?
0: मैंने अपनी वाइफ का भी सेम करा, मैंने बोला यार अप्रैल में उन्होंने ज्वाइन करा है, तो मैं पता नहीं हम लोगों को डर ही रहता है जीरो से, राइट? बट हमने 8 साल में तो लोगों को असिस्ट करा है, तो मतलब लोगों को हिचक दूर करनी चाहिए, जो रह गए हैं उनको भी एनरोल करना है। इतने टाइम हम फोन पे लगे रहते हैं जैसे आपने कहा, तो हम स्किल हासिल करते हैं, फंडिंग हासिल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना नुकसान ही करा रहे हैं अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि आपके आस पड़ोस पे सब अप्लाई कर चुके हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारे तो 200 या 500 फीस है काम होने के बाद लेते हैं, आप नहीं देंगे तो आपका पड़ोसी दे देगा।
1: ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰੀਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 437-264-3175। ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਸ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार दी शाम दी महफिल दे विच एक बार फिर तो ट्यून कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारां नू बड़े आदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ते सारा सत्कार वेलकम टू यू नू खुशामदीद एंड स्वागतम

वेलकम बैक जी। 7:07 हो गया। थोड़े नाल साडा साथ रेडियो अंदाज़ दे ज़रिए बणिया होया चलो एम 5:30 ते तुसीं प्रोग्राम नूं जिथे जिथे भी सुन रहे हो थोड़ा बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम दे नाल जुड़न लई 416-233-7378 स्टूडियोज़ दे नंबर ने 4162-33-7368। अगर तुसीं अपने बिजनेस नूं रेडियो अंदाज़ दे ज़रिए प्रमोट करना चाहुंदे हो जी, प्रोग्राम नूं सपोर्ट करना चाहुंदे हो, मेरा फ़ोन नंबर है 647-234-6000 6472-34-6000 नंबर से तुसी गलबात कर सकते हो। तो जी हाँ, बड़ा खूबसूरत मौसम है। आज 31 डिग्री है राइट नाउ, वैसे तो 26 डिग्री है, बट सोहना मौसम है। गर्मी की रुत चल रही है। कल 29 है तो मंडे 33 है, तो फिर ट्यूजडे तैयार हो जी 37 डिग्री है, तो फिर अगले दिन हैगा 31। सो अगला जिहड़ा वीक है वह काफ़ी वट कढ़ण वाला गर्मी च वट कढ़ण वाला वीक आने वाला, पर ये भी एक दो महीने आ, फिर असी जदों स्नो आ गई तो फिर थोड़ा थोड़ा फिर समर नूं मिस करांगे। सो एनी हाउ मौसम बड़ा खूबसूरत है, जरूर दिन भी वड्डे हैगे आ, तो जरूर अपने आप लई तुसीं टाइम जरूर कढ़ो, तो अपनी सेहत दे लई जरूर टाइम कढ़ो, अपने आप दे लई टाइम कढ़ो, क्योंकि बाकी सारे काम कार चलते रहिंदे आ। कई बार असी भूल जाने कि सानू अपने आप को टाइम चाहिए। सो जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जिदे नाल थोड़ी सेहत चंगी रहे, तुसी सेहतमंद रहो, ताकि फिर तुसी अपनी जिंदगी है जिहड़ी उहनूं असी चंगी तरह बिता सकीए। तो नहीं तो फिर जो कुछ दुखदा होवे, कदे लत्त दुखी, कदे बांह दुखिया, कदे सिर दुखिया, तो फिर तो गोलियां खा के तो जिंदगी कट्टण वाली गल हो जाती है। सो अपना ख्याल रखो जी, खुश रहो, हसते रहो, तो जिंदगी हसना बड़ा जरूरी है, तो जिस दे नाल थोड़ी सेहत होर वधिया हो सकती है। 416-233-7378 स्टूडियोज़ नंबर से तुसीं गलबात कर सकते हो जी। सुनाओ किवें चल रहा थोड़ा वीक, तो किवें चल रहा थोड़ा वीकेंड। कल संडे है, तो कल एक होर दिन सारे स्पॉन्सर साहबान के मैसेजेस भी होंगे, अगर तुसीं कोई नंबर मिस कर जो जी। लास्ट वीक भी मैथों कुलेरिया साहब का नंबर किसी ने लिया सगा। अगर तुसीं ऑटो इंश्योरेंस के फील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, स्पैशली बाकी चीज़ों से भी महंगाई आ, ग्रोसरी दी प्राइसिस काफ़ी बढ़ गई है, या फिर गैस प्राइसिस, जो ट्रंप साहब कुछ माड़ी जी गल अपने मुँहों कढ़ देंदे आ, तो वो दी जी चलो गैस प्राइसिस वध जांदियां, पर एनी हाउ ये सारा कुछ चलता रहना। जे ऑटो इंश्योरेंस तुसीं सोचते हो कि थोड़े जे चार पैसे बच जाण, तो फिर कुलविंदर गुलेरिया जी नूं कॉल कर लियो, ऑटो ते होम इंश्योरेंस दे विच तुहाडी हैल्प कर देंगे। तो नाल दी नाल ही जी अगर रिन्यूअल आउंदी हुंदी आ तो फिर जरूर एक बार पता कर लिया करो, उदों जरूर थोड़े को मौका हुंदा है जदों तुसी अपनी ऑटो इंश्योरेंस बचा सकते हो, या कोई बंडल बना सकते हो जिदे विच तुहानू होम इंश्योरेंस भी मिल जाए, क्योंकि अजकल तो होम इंश्योरेंस भी बड़ी महंगी है, $250-$250, $300, $300 तक होम इंश्योरेंस है, जिहड़ी कि ईवन कि खाली घर की इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा महंगी है। जे घर अजे बनने या किसी ने फ्लिपिंग वास्ते लिया, वह भी घर बड़े महंगी इंश्योरेंस मिलती है, पर जे तुसी चार पैसे बचाने हैं तो कुलविंदर गुलेरिया जी ने कॉल कर लो, ये जरूर थोड़ी मदद कर देंगे। 647-218-0726 6472180726 ते कॉल कर लियो जी। तो अगर तुसी चाहते हो कि घर अपलायंसिस लैके आने हैं, तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस से जरूर पहुँचना, थोड़े लिए इन्होंने एक तो डिलीवरी थोड़े घर पहुँचते कर देने, अपलायंसिस फ्री डिलीवरी होएगी, तो नाल ही नाल थोड़े लिए सहूलत है कि तुसी 6 महीने बाद पेमेंट कर सकते हो। सो फ्रिज चाहिए या स्टोव चाहिए या लॉन्ड्री चाहिए आ, तो वह तो अज चाहिए आ, पर पैसे नहीं है तो 6 महीने बाद पे कर सकते हो, या 6 महीने के विच दौरान तुसी थोड़े थोड़े पैसे करके पे कर सकते हो। सो इंट्रस्ट कोई नहीं है, कोई ब्याज नहीं तुसी पे करना, 6 महीने बाद भी उन्नी पैसे पे करने जो तुसी आज पे करने हैं। सो तुसी अपलायंसिस लैने हो या फिर टीवीस लैने हो, तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस से जरूर चक्कर लगा के आना जी, प्राइसिस तो तुहानू बेहतरीन इत्थों मिलनिया ही हैगियां, ते नाल दी नाल होर जरूर थोड़ा रिगार्ड किया जाता है जो तुसी ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस से जाने हो। 905-450-2828 नंबर है जी, 9054502828 905-450-2828 नंबर से तुसी कॉल कर सकते हो ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस से। ते नाल दी नाल स्टूडियोज नंबर दस ही जी, 905-450-2828 नहीं 416-233-7378
905-458-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ 416-233-7368 416-233-7368

जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्मा की, जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है, दूर थे और दूर है हरदम जमीनो आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। बात शमा और परवाने की चली है तो बेपनाह मोहब्बत परवाना बयां तो नहीं करता, मगर अपनी मोहब्बत का इजहार जलकर खाक होकर कर देता है, अपने आप को फना कर देता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है। ऐसा ही जिक्र है इस खूबसूरत गजल में, गुलकार हैं गुलाम अली।

0: और बुध को देवता करता है इश्क, इम्तिहान तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क। अजीब इश्क की दास्तां होती है, क्या किसी ने खूब कहा है, तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। सामीन, जिस तरह खुदा का राज कोई भी आज तक समझ नहीं पाया, उसी तरह इश्क भी कुछ।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.